0: हेलो।
1: क्या मिला? किसका
0: अच्छा बे,
1: सिंड्रेला लग रहा होगा।
0: सिंड्रेला।
1: मैं लौंडा। तो कहाँ ना वो यार बहुत लिल स्क्वायर।
0: है ना यार बहुत?
1: लिल स्क्वायर।
0: लिल स्क्वायर मैं कब ने?
1: हम तब बोलना दीते।
0: कब बोलने दीते? हम भी मिटे बुरे ये कहने। Wow,
1: okay.
0: Apoya time. Agamo.